जन्म कटे बेकार, पैवे करती जमी बार, पैवे चिंतरे सिर पार, पैवे राजा तम द्वार, पैवे सूर्य पैवे चंद को करोड़ी चंदना, पैवे सिद्धु सुनार, पैवे जाने आकाश, पैवे जोत मामल सूर, पैवे जावे जावे मोर, सजे पौ के सिद्धे, नानक ने पौ निरंकार, सचे अल्लाह पहला, नानक ने पौ निरंकार, हो के तेरा अनुवाद, कितने कन कहानियां, कितने वेद विचार।

अरे मेरे प्यारे, ओ माई बिलव्ड माइंड, कम होम एंड मीट द गुरु. सो द क्वेश्चन इज, वेयर इज द गुरु? एंड गुरु सेज इन दिस लाइन, कर वसै हरे, ही रिजाइड्स इन योर ओन होम. So Guru is indicating towards our body, that Guru resides in our body. So he is asking the mind to come back and let's meet the Guru, which is in your own home.

सट्टा तेरा ए नहीं। प्यारे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह जी, साडे जीवन दे विच जो सोची विचार और मत अज्ञानता के कारण दुनियावी मोह ममता के कारण अत्यंत तृष्णावां के कारण जो असल सोझी होनी चाहिदी है इंसान नूं वो नहीं है। ते गुरु बाबा जी अपने शब्दां दे राहीं अपने इना पवित्र वचना दे राहीं सानू ओ मत बख्शदे हन जिस मत नूं गुरु मत आख्या जांदा है। गुरु दी मत जो कि जीव दे जीवन च आए तो बिना इतनी देर तक जीव दे जीवन दे विच जिंदगी दे विच गुरु दी मत ना आ जाए उतनी देर तक वह अंधेरे दे विच ही रहिंदा है, अंधकार दे विच ही रहिंदा है। कल दे कीर्तन दे विच असीं यही विचारिया सी, मत जो साधारण तौर पर सानू मिली है उस मत दे विच अजिही शिक्षा शामिल नहीं जो कि साडे जीवन नू सफल कर सके, साडे जीवन नू इस दी मंजिल तक पहुंचा सके अते मनुखा जन्म असीं सफला कर सकी। गुरु बाबा जी की बाणी असीं सारे पढ़ते हैं अते गुरु बाबा जी की बाणी दे विच एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि साडे इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा कोई बहुत ही खास पर्पस है, एवें नहीं असीं आए। ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत वड्डा रीजन है, एक खास मकसद है जिसनूं असीं पूरा करना है। ये शिक्षा, ये तालीम असीं बड़े कैजुअल माइंड दे नाल सुनते हाँ पर इसनू असी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। पर महाराज जी की बाणी इसनू बहुत सीरियसली लेंगे। महाराज जी की बाणी आखदी है तुसी सिर्फ एक ही काम करन दे वास्ते आए, तुहाडा इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत एक भारी मकसद है। वो की है? गुरु बाबा जी आखते हैं अपनी पवित्र बाणी के

गुरु महाराज दसते हैं कि इंसान सानू समझांदे हैं, मत दिंदे हैं, इस शब्द दे राही साडे जो जीवन रुक गए हैं, असी राज ही किते डेरा लगा लिया है, मंजिल तक अपड़े ही नहीं, मंजिल दा ख्याल ही नहीं, मंजिल दा चेता ही नहीं, अते रस्ते दे विच ही किते डेरा बना लिया है। गुरु बाबा जी ने आख्या मंजिल ते पहुंचन तो पहला डेरा नहीं बनाई, मंजिल ते पहुंचन तो पहला रुक नहीं जाएगा। तेरी मंजिल किते होर है, लेकिन तू डेरा किते होर बना के बह गया है, रस्ते च ही रुक गया है। असी इन्हां कीर्तनां नूं जे ते इस तरह सुनांगे कि असी अपने जीवनां नूं कोई इंस्पीरेशन दे के अगां तोरना है, तो जो साडा फर्ज बनता है वह असी करना है, फिर ते कीर्तन कीते और सुने बहुत ही भागां दी गल है। नहीं ते साडी आदत नूं महाराज जी जानते हैं, वह भी मैं आप जी नूं सुनानी चाहना थोड़ी जी। साड़ी जो आदत है, जिस तरह मैं कल भी कीर्तन च अर्ज की थी कि मैं एक लफज भी अपने पासों नहीं कहना, तो जे कोई गल चुभमी भी लगे तो वह गुरु महाराज जी की है, उन्होंने हक है सानू समझाण दा, कई तरह कहण दा। गुरु महाराज मनुख दे जीवन नू जानदे हन, इह सुन सुना लैंदा है, पर उसे तरह का ही बनिया रहिंदा है, बदलता नहीं। सबे गल्लां जातियां सारियां गल्लां जान लईयां, सुन लईयां, पढ़ भी लईयां, सुन के चुप किया, पर फिर भी कहिंदे सुन के यह चुप किया रहिंदा। सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, फिर चुप किया रहिंदा है। जीवन दे विच इह एक्शन नहीं लेंदा। सब तो पहला तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए है, इन्फॉर्मेशन मिलने तो बाद इंसान का फर्ज है कि उस उत्ते एक्शन लवे। गुरु महाराज आओ अज के कीर्तन दे विच जो सानू समझा रहे हैं, वही कहते हैं कि जिथे तुसी रुक गए हो, जिथे तुसी अपना डेरा बना लिया है, जिसनू तुसी अपनी दुनिया बना लिया है, कहिंदे ओ तुहाडी दुनिया नहीं है, इत्थे तुहाडा डेरा नहीं है, इत्थे तुहाडा घर नहीं है, इत्थे तुहाडी मंजिल नहीं है। बच्चे नूं प्यार नाल पिछे लै जाओ, इस तरह कीर्तन च डिस्ट्रैक्शन हुंदी है और उस ख्याल की लड़ी के विच विघन पैंदा है।

आप जी ने बाणी नू पढ़दिया जां सुनदिया एक लफ्ज बहुत दफा सुनिया होएगा, निज घर। निज घर बाणी च आंदा है ना। गुरु महाराज कहते हैं जितनी देर तक तू अपने निज घर दे विच नहीं चल जाता, जिहड़ा तेरा अपना घर असल घर, उतनी देर तक तू बेघर है। बेशक तेरे पास घर है भी, तां भी एक घर तेरा नहीं, एक घर नहीं। तो गुरु महाराज जी की बाणी का यह जो सुनेहा है, यह जो मैसेज है, यह जी मत है कि इंसान तेरी जिंदगी ने उस दिन पूर्ण तौर पर सुकून और सुख दे विच पहुंचना है जिस दिन तू अपने निज घर दे विच पहुंच गया। कीर्तन सोहले का पाठ असी रोज करते हैं, सोहले की बाणी दे विच असी ये पंक्ति भी रोज पढ़ते हैं। पंक्ति असी रोज पढ़ते हैं, पर असी पंक्ति पढ़ जाने हैं निज घर नूं प्राप्त करन दी ना ते अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होंदी है ते ना ही वो चीज साडे वास्ते कोई खास इशू बनती है कि मैं अपने इस गुरु बाबा जी दे वचन च जो अपने निज घर नूं लभण नूं आख्या जा रहा है उस निज घर नूं भी लभना है। पर असीं पढ़ रोज जाने हैं, यही कारण है कि गुरबाणी सिर्फ एक पढ़न तक रह गई है। जो इसकी असल साइंस है उस वल असी कदम नहीं उठाए, अपनी जिंदगियां नूं उधर तोरिया नहीं। हुण पंक्ति रोजाना जिहड़ी फैमिलियर है, असी पढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं

आप अपनी सुर्ख में वापस कर जोड़िए। गुरु महाराज जी आखते हैं, सुखी ओही हैं जेड़े अपने इस जीवन दे विच निज कर लब लैण। महाराज जी आखते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई। ओ सुखी हन, असी सुख लभते हैं ना सर, असी सब सुख लभते, पर कहिंदे ओही सुखी होणगे जेड़े अपना निज कर लभ लैणगे, ते जेड़े घर तो ही बाहर हन और सुखी किवें हो सकते हैं, वे घरे किवें सुखी हो सकते हैं। जिनी घर जाता अपना से सुखी है भाई, तो बाणी दे विच थां थां थां थां ते अनेक पंक्तियां ऐसियां आंदियां हन जिन्हां दे विच महाराज जी निज करदा जो कॉन्सेप्ट है, निज करदा जो विचार है, वह सानू सुनाउंदे हन। थोड़ियां पंक्तियां मैं आप जी दे सामने होर अर्ज करां कि निज कर तो उन्हां दा मतलब की है, वट डू दे रियली मीन बाई निज कर। आओ एक पंक्ति दे राही समझन की कोशिश करिए। कहते हैं

गुफा पुराने लोग ऋषि मुनि गुफामा बना के रिहा करते सन। गुरु महाराज जी आखद साडी भी एक गुफा है, असि एक गुफा दे विच रहने हैं, पर वो केड़ी गुफा है? कहिंदे सहज अवस्था। हुण सहज की चीज है? आत्मा ही सहज है। अकाल पुरख वाहिगुरु सहज है। सहज का मतलब जो कदे भी ना बदलता होवे उसनु सहज आखते हैं। शरीर सहज दे विच कमजोर हुंदा है, कदे ताकतवर हुंदा है। शरीर दे विच अनेकां चेंजेस आंदियां हन, कदे बचपन है, कदे जवानी है, कदे बुढ़ेपा है। शरीर दे विच हर वक्त चेंज आंदी है। शरीर दे अंदर एक होर वस्तु है, वह है मन। वो भी सहज दे विच नहीं है। ना शरीर सहज है, ना मन सहज दे विच है। ते सहज दे विच केड़ी वस्तु है? केड़ी वस्तु है? आत्मा। आत्मा जो वस्तु है वह सहज दे विच है। गुरु महाराज जी कहंदे ओ सहज जो है, आत्मा जो है, उस दे विच असीं अपनी गुफा बना के उत्थे रहने हां, वह साडा घर है।

हर्क अनंत, अनंत का मतलब लिमिटलेस, कहते बेअंत, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी खुशी है। उत्थे हर्क अनंत सोग नहीं बिया, सोग का नामो निशान नहीं है, कहते हैं सोग घर गुरु नानक को दिया। परमेश्वर ने अकाल पुरख ने गुरु नानक नो कर दिता है, वह है निज घर। किते महाराज उसन सहज गुफा आखते हैं कि सहज गुफा घर आसन बांध्या, किते आखते हैं हरख अनंत सोग नहीं बीया, सो घर गुरु नानक को दिया। तो एक पंक्ति होर सुनाना, कहते हैं नानक बद्दा करता हां। असी भी जो एक तो हुंदा ना भी बनिया बनाया कर ले लेना, एक हुंदा है कस्टम मेड हाउस बनवाना, के प्रॉपर कोई आप सिलेक्ट करके लॉट लैके कोई लोकेशन देख के कोई जगह लैके फिर आप उत्ते अपनी डिजाइन दा अपने मतलब दा घर बनवाना, घर बनना। गुरु महाराज जी आखते हैं कि मैं अपना घर उत्थे बनाया है, नानक बद्दा करता हां, कि मैं अपना घर तहां यानी उत्थे बनाया है, किथे जिथे मृत ना जन्म जरा, ना उथे मृत्यु आंदी है, ना उथे जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ेपा है। भाव उथे निज घर महल पावो सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा, उथो फिर वापस फेरा नहीं होएगा। उस घर च पहुंच के ही तुसी अपनी मंजिल च पहुंचते हो, उस तो उरे उरे जितने भी घर हैं गुरु बाबा जी आखते हैं ये तुहाडा डेरा नहीं है, ये रस्ता ही है। मनुखा जन्म जो है ओ राह दे विच ही तुसी हो, ए पेंडा ही है, इसनु मंजिल ना समझ लो, ते इथे घर बना के बैठ गए ते उथे रुक गए ते फिर तुसी मंजिल ते ना पहुंचे, रस्ते दे विच ही रुक गए। ये है गुरमत की तालीम। प्यार नाल इस पंक्ति नु गाओ।

वो बिल्कुल भुल गया है, वो बिल्कुल मरना भुल गया है, इस करके असि इत्थे अपना डेरा बना रहे हैं। कहिंदे हन ये डेरा नहीं है, इत्थों अगां ट्राई टू मूव फरदर। गुरबाणी दे विचों अपनी मंजिल समझो, निज घर नूं प्राप्त करना है जो कि तुहाडा असल डेरा है। कहिंदे हन मत्ती मरण विसारिया, इस मत्ती हुई मस्त मत ने जो कि दुनियावी रंग च मस्त है मरना विसार दिता है,

पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा द्वैदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदू।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगीस करते जोगा, लाख पोगीसर भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बादिया, तेरा अंत न पारा बादिया।

बंगाली फरंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावार या। रोके रुगेले मग देश के मंगेले भी बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं, गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे गुन गावे गुन

जिन्नी दो दिया तिन पूर्ण प्रताप पाए सर्व धन ताम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा बारिया।

रो लिया रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुत हो पातशाह बस अदूर कह लगे मरदाने बख्शीए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनु पुछ के बख्श दो ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद सोनी सदा। तो हजूर ने अभय दृष्टि नाल तकिया ते किया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पुष्ट गाड़े बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेनु नरकार ने माया दिती है दान पुण्य आज माया भी कर सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहता पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं तुहाडी सेवा तुहानू प्रसाद छकावा दुध पिलावा। अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछण वाली गल नहीं चलो हूं तुहाडा सिख बन गया कौड़िया। अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह अदूर कह लगे मरदाने अजे नु सिखी दिती सिखी की है हुकुम ते जे हुकुम मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्ला विच नहीं गल्ला दी सिखी कमजोर सिखी दा स्वरूप की है उस वाहिगुरु दा हुकुम हुकुम मनिए होवे परवान तां खसमे का मह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे तक प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम दा पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह करोड़िए चरना ते बैठे पातशाह मैं गरीब दे दी बख्शिश कर दिती है। हजूर कहन लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु दी जिस वेले बख्शिश दा समा आउंदा है फिर जिहड़ा संभाल लैंदा है ओह पाज अज करोड़िए ते बख्शिश होई तुहाडे ते वी गुरु दी बख्शिश ते बख्शिश वाला समा आउंदे ने बख्शिश तो सदीव ही है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज बचन करदे सन उस वाहिगुरु दी सदा ही मेहर है पर उस मेहर नू संभाल लेना ए वड्डी आप जिन्हों के भागा विचे बख्श दो वेले आके आप कीर्तन जिन्हों से गुरु जी कई आने कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा। कौड़िया ये मालक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है ते कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई भाई कीर्तन दा अमृत पी तो ए दात गुरु दी अपनी है। हजूर कहण लगे मरदानिया रवाब चुकी ते शब्द दी अखीली तक पर मरदाने ने रवाब चुकिया ते बाबे ने सोने गले च ए सबदा की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: जो गुरु का उपदेश सैदा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है और लोग सुखे ने हर पल आपे मिले और कहने सात संगत जिथे होस्टल दिया संत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधकों के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल जुड़े तो अज गुरु दरबार साहिब है अमरीकन सिंह ते गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने थे ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके हो पार के तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उहदे च कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरमुख प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाएंगे उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन चल रही है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द का आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चियों सुखी जीवन सदा चढ़िया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा Thank you.

नर्म कार्य हो। तन गुरु नानक सत्य पाठ कहा, रेन नदी चुप्पी मार के खट खंड के खट खंड मान लो आए थे। आज हजूर फिर चले गए सुल्तानपुर के अंदर, सारे शहर के अंदर के पहुंच गए कि नारद वे नदी डूब देवी नानकी को भी कई ने जाति किया, जैसे तेरा वीर वे नदी तो बाहर नहीं निकली और देवी ने जल्दी कि मेरा वीर कदे नहीं डूबता, वो तो डूबिया उतारना पशु परे मुगत को उतारे पाहन पास उतारे। हजूर सचखंड पहुंचे, सचखंड वैसे नरम का अगले नूर ही नूर जानना ही जानना। उस जोर के अंदर जाके हजूर वीर हो गए, जो जर में जर आए खटाना त्यों ज्योति सन जोत। कुछ समय के बाद उस ज्योति जो सोना कांता है सदगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई, नानक जी तुम मातलो पिछे कल की जीवन हर करने वास्ते वापस क्यों आते। हजूर ने किया मेरे दादा जी पहले दसो सत्खंड के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते कहना जैसे सब चाहिए जित दर लाख मोहम्मदान ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम इन्हों अपने नींद क्यों की आवाज आई ने मैं इन्होंने दुनिया भेजे जाके मेरा नाम दिखाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम दिया। इन्होंने अपना नाम जपाए अपना करती अपनिया जनानिया का नाम भी मैं नहीं इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे लिए नींद नहीं हो रही साहबान ने हथ जोड़े वाहेगुरु फिर करो कृपा अति मात्र में जा

की दुनिया में तो उस पहले के अनुसार अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जाके दुनिया में छुपाओ खेड़ा ओंकार नाम।

अपनी कमाई का बधाना पा के भेज गया है जिला जिला वाला इमराबाद और रोड जिला गुरु ने विचाई की दास ने सची दर्शन की है पाकिस्तान चो जिला आ गया है तो प्यारी दास संगत मेघ रूपावे रोड सन पर जिन्हों रोड़ा उत्ते सतगुर के पातशाह जी ने समाधि लगाई जो उन्होंने हाथ लाओ तो देखो वर्गे साई साहब जी जिसमें रेत हार कर रोड़ा की तो करी मिठाई फिर पाई कई तपस्या क्योंकि क्योंकि सानू तपस्वी बनाना चाहिए सानू संत सिपाही बनाना मेरा सिपाही भी संत भी बनाना जिथे राजपाल उसे योग भी देना इस वास्ते मार्ग में पहला आप पारी नहीं तपस्या बड़े पार हर क्यों बनाई महान तपस्या क्योंकि कर करते भी जाके पैगाम दे दुनिया को वाहगुरु नाल जोड़ना बाबा जी प्रकट करते सर बाणी कह मत नहीं एक कमाई करके दुनिया को गुरु ने पहला आप कमाई वड़े बाबा जी एक वारी शिमले तो उपर कुफरी एक जगह है उसे पहुंचे पूर्णमासी का समागम आया जिस तरह अज भाटा वाली पूर्णमासी तो उस जिथे लहर ख्याल आया चलो बाबा जी के दरबार च हाजरियां भरी कुफरी पहुंचे होर भी संगत दिल्ली तो डेरा तो लाहौर जन्म लुधियाना होर किताब शिमले दिया संगत उराती दीवान लगा महाराजा पटियाला सारी सेवा बाबा जी की उन्होंने संभाली हुई बड़ी संगत हुई रात एक दो बजे समाप्ति हुई अमृत वेले फिर कीर्तन तो उस वेले हजूरी राजी सन भाई साहब भाई संतर जिस तरह अजकल बाबा जी ने हजूरी राजी भाई साहब भाई खेत वो किधरे बाहर नहीं वो तो उसे सन गुरु नानक के पातशाह जी को हाजर हाजर जान के साहबान कीर्तन द्वारा हाजरी भर के कीर्तन सुना के उन्होंने चिट्ठी परसों चौथाई बड़िया मेहर की उन्होंने बख्शिशा की प्यारी खास संगत तो अजकल जिस तरह हजूरी राजी भाई साहब भाई शेर उस वेले भाई संता सिंह जी राजी अमृत वेले कीर्तन होया पूर्णमासी तो दूसरे दिन हाउ किस कोल घुमाया गुरमुख जी ने गरीब ये उसकी मर्यादा पूर्णमासी तो दूसरे दिन यही कीर्तन बड़िया बाबियां लैके इतना आनंद बनया कीर्तन का कि राजमाता इतने प्रभावित हुए आप संगत की उठ के बाहर आके साध संगत जोड़े जा रहे गुरमुखरी देख रही कीर्तन का भोग पाया हुक्म होया सेवकान तुसी शब्द की हाजरी पर कीर्तन आरंभ किया शब्द पढ़िया कोई आन मिला रहे मेरा प्रीतम से आया हाउ तिस तयाग बिचारी दर्शन हर देखन के कृपा करे तो सतगुरु मेले हर हर काम से जे सुख दे तुझे एरा दी दुख भी तुझे पे आई जे भुगते इस ही राजा दुख विच सुख बनाई तनमत काट काट सब अरती अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी धोवा जो देवे सुख संगम जुड़ी गई अमृत वे एक बाबा जी विरागर लगाते जुड़े सन अकाल पुरख ये सवेरे सुख पढ़ी बाबा जी ने विरागर दा कहन लगे भाई जी की पढ़े गरीब नवाज पखा फेरी पानी धोवा जो देवे बाबा जी कहने लगे कदे पखा फेरे भी है कि एवं पढ़ी जाने कदे संगतां वास्ते पानी धोए हथ जोड़ के किया नहीं गरीब नवाज असी तो पंक्तियां पढ़ गए बाबा जी कहने लगे फिर जो अमल नहीं किया तो सानू किस तरह उपदेश कर सकते
अतिनि योगी अच्छी तरफ प्यारी ख्याल संगत संत महाराज संत सुजान सिंह जी सारा जन उन्होंने पिता जी का जोड़ी वाला सिंह वाजे तो उठा दिया। मन च बड़ी निराशा का हुई बाबा जी की प्रसन्नता लैन वास्ते आए थे। उल्टा लिया जी किसी गुरमुख ने कहा कि उदास ना हो क्योंकि बाबिया की ताड़ना ही ताड़ महापुरुषों ताड़ देने कुछ देना मातुर बच्चे कुछ कहता है कि इन्हों लहर बढ़ाना होता है कुछ उपराला करो सोचिया कि पक्षे का समर्थन क्योंकि उससे बड़ी ठंड होती है। ख्याल आया भी पानी ले पर पानी बड़ा नीवा चश्मा बड़ी दूर उतो स्नान करके मसा उपर चढ़िया जाए कोशिश की थी प्यारी सिर देते तीन चुप ने सारा सारा तेल के कनस्तर चश्मे से पौके पानी भर लिया चढ़ाई चलनी शुरू कर दी बड़ा सा चढ़िया आखिरकार जितने ऊपर आए तो बाबा जी भी नितनेम तो बाद बाहर निकले चिट्टे दुध वर्गे बस्तर बने चिट्टा दुध वर्गा दाड़ा मस्तक से रबी दूर नेत्रा च रबी मस्ती बाबा जी कह रहे हैं दास जैसे सारा जत्था पानी लैके ऊपर पहुंचे बाबा जी ने दूर ही वेख्या मुस्कुरा बाबा जी मुस्कुराहट निकली बड़ी बस्ती मेरे आए कह लगे रख दो जे तेरे पानी के चीर रखे तो कह लगे कोई नहीं थक गए होंगे नहीं गरीब नवाज भावे थक गए पर फिर भी नहीं किया बाबा जी प्रसन्नता आए कह लगे कोई नहीं भावे एक तीर लिया जे हूं पंक्ति पढ़ जोगे तो बन गए आपको चरीब बाबा जी कह लगे बाणी कह मत कह असर थोड़ा होंगे कमाई करके कहो दसर पूर रसना का बोलिया कन्ना तक रह मन से जाके कद ही मन का बोलिया या मन से जाके वह तो बाबा जी इतना वक्त कर कहते सर भाई कमाई करके दुनिया रोते इतनी महान कल बाबा जी ने तपस्या की शरीर से निर्बल हो गया लकड़ी दिया घोड़िया बना के फड़ के बाबा जी सारी सारी रात खड़ोते रहे इतने बस ने फिर केस बन रहे हैं क्योंकि इस शरीर में दर्द हो गए किधरे सौ न जाए तो इतनी महान धारणा कर दी एवं तो दुनिया ने पूजी बाबा जी ने क्योंकि बाबा जी ने धन गुरु नानक की पूजा की है इस वास्ते जन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज अज मेरे धन गुरु नानक ने महान तपस्या की भारी करी तपस्या बड़े भाग हरकों बनाई भाई साहब भाई गुरुदास जी ने इधर बाबा पहला खचखंड नामित नाम करी थी नाम का खजाना लिया प्यारे साले वास्ते बाबे ने ते नाम करी थी निम्रता निम्रता सब तो वही है बाबा देखे ध्यान सर जल्दी सब पृथ्वी दिस आई बाजो गुरु गुबार है कभी सुनी लुकाई बाबे पेट बनाया उदासी की रीत चलाई फिर दरिया शोधन तरत नाम का खजाना ये जरा तुष्टी रिड़ के सारा गुरमत कट के सतगुरु श्री पातशाह दुनिया मिलन वास्ते तुर पे फिर किस तरह घर घर के जाके बख्शा खरीदियां और परीक्षावान ने जवाने बेनती करेंगे तो आप सारी खास आप धन हो वे पाठों वाले हो गुरमुख मारी पाए कि प्यार ना चले गए अमृत वेले एक खास बख्शी दर्द एक खास रंग दर्द कल जो भी आलस की चादर ला के हंस उडारियां मार के आप सहबान सत्खंड भी जुड़े हो देवते बने तुम सारे देवते देवता कौन होंगे जिरा देवते वाले कम कर राजिक कौन होंगे जिरा रास्ता वाले कम कर परे दास किसने बक्ति बलहाय गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस से देवते की ये कर लगी तो आओ यही हिसाब कर धन गुरु नानक देव पातशाह सुने पवित्र पावन दिन में बख्शिश करो सर जी इसे तरह आप देख सकते

करके स्नान करके चले आए हैं। एक दिन कले तुर जाए एकांत रह के अपने सारी चीज मूल मंत्र का जाप करे सर बड़ा महान बड़ी शक्ति है। ये लंकारी मंत्र जितना जप लो यदा बड़ा था तुरदिया फिरदिया उठदिया बहदिया हर ना वो नाम वाहगुरु जी का ये जपांगे सतगुरु दिया मेहरा फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक सुखी पर लोक लगाइए उस उपरंत कीर्तन की समाप्ति और

अमृत जल धारा पूर्ण चावल धारा सगल मनोर पूरे जय जय कारण पर्व जल अंदर लाभे सगल पूरे पूर्ण बुद्धि।